0: Martí, no vi un punto que te sirve que me contás, por cierto, dicho no hago bien el juicio, la cosa que hay un peligro, para que te den los vidas.
1: Mira, una casa que es una cámara de aire, que está de esa y por ahí, para que no se trata, que está la serie, para ahí, la casa, tengo un tique, una reca, es una casa extraña, la compañía que va a tener para el patrón, o al día, pues, a... Porque cocina, preso y maraco, bari, tatate, su atabaje, con puro zandam, con chetipati, promocras, netipablo, utar, cocina, rahat, ma, kendre, tuar, kazan, dozandi, kendre, ma, rahat, kusma, sama, gamin, nirae, dikiria, prava, etcétera, ma, tati, kame, tata, sakare, kata, polizalam, surma, natale, kazan, sotar, urba, rastia, su contraparti, rasopa, prostipati, dao, parmes, en vale, randico, palogar, katoli, realmente, bipas, rahat, kusma, आर्थिक सहायता ने घोषणा कर सकती कसम हिमालय ने पार्टी के घोषणा का बाकी प्रभावित कला के आवश्यक सहमति खरीदारी वितरण करने जमा विपद में राज्य समेत संगे अपना संपूर्ण शक्ति परिचालन दल का नेता ने दावी कर राजोपा ने प्रधानमंत्री विपद राज कोष में 50 लाख जमा करने निर्णय राजोपा केन्द्र फील्ड दुबई तर्फ परिचालन पार्टी सभापति रवि लामिछाने ने सरकार और अन्य दलसंग समन्वय करते पार्टी पंक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री विपद राहत कोषमा राजोपाले 50 लाख जमा गर्ने निर्णय गरेसँगै अन्य पार्टीहरूले पनि त्यसमा जम्मा गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। भदौ 10 को हिम बाढीले भुटेकोशी बाढीका कारण भुटेकोशी र त्रिशुली नदीमाथि पुल बनाएपछि बागमती राज्य सरकारले तत्कालीन वैकल्पिक प्रयोगका लागि त्रिशुली नदीको त्रिशुली बजारमा हिजो तुइन जडान गरेको छ। यसबाहेक देवीघाट बेतावती भैँसी र सिमचौरमा तुइन जडान हुने भएको हो।

सुझाव हुआ कि धारा 13 मानव व्यक्तिगत बुद्धि को 1177 तथा बाल हेल्पलाइन 10 9 8 मिलो कॉल कर रोज

अंतर में रहते मन ज्यादा पाप हुए तो विष्णु भगवान मानुष के रूप लेके संकट का इच्छा है। तो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी यही कंस के बहुत ज्यादा पाप हो गए है तो यही है नहीं धरती माँ एक तो गोकुल पैदल है एक तो पैदल है तो ये नहीं कंस के माँ है तो यही धरती पाप हटाल तो यह कृष्ण कन्हैया बन के नहीं तो थारु भाषा माँ कृष्ण के उन्हें कन्हैया बनते हैं तो कृष्ण कन्हैया गाय बाबा हुए जो की वासुदेव

भी जुटे हुए तो महताई जैसे लड़का मांगे धनजन खाए तो महताई मांगे खाए तो कहे सधाएगी चारू भाषा तो कहे सधाएगी आप जम के सधाएगी अब फायदा का मांगा रही

0: अभाव यादगी साग सब्जी फल फ्रूट सहित पूरा खाना ने बच्चा खाना तंदुरुस्त बने पूरा खाना का सामग्री पूरा
1: रेडियो कृपा बाटे सिंह द्वारा सामाजिक जारी संदेश
0: सामाजिक दूत बच्चा को पहिलो औषधि हो।

कार्यक्रम में सहभागी होने इच्छुक कृषक कृषि समूह कृषि भारत तथा

भगवान मानुष के रूप लेके संकट काटे रेखा है। तो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के कंस के बहुत ज्यादा पाप हुई है, तो ये नहीं धरती माँ एक तो गोकुल में पैदा नहीं है, एक तो मथुरा में पैदा नहीं है, तो ये नहीं कंस के मारे है, तो ये धरती पाप हटाल, तो यह कृष्ण कन्हैया बन के नहीं, तो थारू भाषा माँ कृष्ण के मैंने कन्हैया बन के नहीं, तो कृष्ण कन्हैया गाय बाबा हुआ गेहूँ की वासुदेव, तो वासुदेव के

अपनी जीव पे हुए तो महतारी जैसे लता मांगी धन धन खाए तो महतारी मांगी खाए तो कथा सधाई गई थाल भाषण कथा सधाई गई अब देवी कथाई गई अब खाई ना का मांग भाई।

Thank you.
के समाचार सुन रहा हमारा संदेश का समय बुराई लगल था। हमारा संदेश वही न सिर्फ वही रहा मुख्य मुख्य संदेश की तरह बांसुरी नगर पालिका कैया फैसी पूर्णा किसान कला पशु स्वीकृति पोषण प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संचालन कला आवेदन महत्वपूर्ण डीएनए नमूना संकलन शुरू किया। हमारा संदेश काल बिना 7 बजे नेपाली भाषा हमारा संदेश पहले बाटे तब समाचार समाचार कक्ष सबको सफाई अंतर प्राथमिक सहरिया गौरी शंकर कैमरा महामेश बिन्दु कुमार देवी आयोग।

साथी में कोई दुर्घटना कर सकते होने यदि उसको जीवन संभव कर उसको उसको भविष्य में अगर उसको जीवन लगी ठूल नुकसान होने वाला होने तस्ता घटना हमी गुप्त राखने गुप्त राखे हमी तक समाधान गुप्त ढंग अधिकार हो तर कहीं सामान किसिम को हमी कि हरासमेंट दुर्व्यवहार संबंधित निगा में गए रोकने पर्च हरासमेंट भन्ने कुरा तो गुप्त राखने होते तरप इसको प्रकृति अनुसार कस्त किसिम को दुर्व्यवहार अवस्था हेरा प्रकृति हेरा हमें उपाय लगे।

संख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण शाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपाल का साथ ही वित्तीय कोरियाला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदलीय अनुसंधान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब काठमाडौँ

0: सब पूरी संभावना सब आज राति कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी दशदूर पश्चिम प्रदेश का तराई भूभाग केही स्थान तथा मधेश प्रदेश का थोड़ी स्थान में मध्यम वर्षा हुआ सत्वे मौसम विविध विविधता ने सीआईएलआई जानकारी दिनुभयो।
1: पहाड़ी प्रदेश को

साझा करना फिर देखना अभी प्रतिदिन पढ़ाई में विधान नमस्कार शुभरात्रि।

0: programa en el 2007 que era solo fantasía del tal pasado, ponías Kisha, Divani, Gretel, Pamela, Comita, por su cama por ti. Antes de que arranco, ese paso, lo llamo. Como tal como vos, la ética, basta con entrar a la lucha con la sana con la moda. Dentro de la ley, con mis andamos en Cali, bien me di, tengo la tal paso en la lucha. Chuti suerte, ni tuit, por tu hi. Por tu hi se ha dado, voy a que su último ti, tal y otro, su padre, don, no más es por aquí, todo voy a por Charu, es el Charu cuando el platino voy a por con que no tomo sai, apno por tu tani manita vivi voy a por por con que te alquiela Charu de la noa por con que te la te clamari y te la sortina Charu con la pujan de vida. सबसे बढ़ता की बात बुढ़िया पर बात मना कर रहा थी बिना भी पैसे बना चुका बात और फिर अपने को कैसे समझेगी शायद मैंने समझाई भी मेरा रास्ता बहुत कम था मैं जिसके साथ बताई हमारे को यह पर मुकाम क्या हो एक कैसे कमाने चलो कैसे कमाई लगो क्या कर चलो दिला दिला
1: Thank you.
0: पिता बाकी मेरे मेरे ना रोटी पकी खिचड़ी पकी ज्यादा पड़ी जैसे कदम पड़ी का बड़ा बना खाई था जहाँ मन था वहाँ अब मैं हमारी जैसा भी मन था वहाँ था भी पसी को मन था का खा मन था के था भी तो जहाँ भी मन था जहाँ अपने को सुना खाली बाकी वहाँ बना वहाँ बना के रख कर ये इलेक्ट्रिसिटी का सेंटर में खाई देना मत देना खेती हम लोग अभी कई से जाना कुछ भी कर रहे आपने तो हम के मुझे आज तो कौन ठीक रहा उसे सेक भी आधा बात आ लीजिए किसी का सेक भी वो पैसा कर सकता है माता बोला आप हम बच्चे आप बोल सकता आप तो कमर की जाना है एक बियर सी पिले तो बड़ा बोल रहा है और अभी से ना और मन के लिए सीखा मैं आशा करती मन का ऐसा मूड फसल कर देती बात हूँ वेंचर आनी बहुत पुरी संग्रह में संग्रह में मेरी मेरे सिस्टर का छोटे छोटे बच्चे

में यह ऐसा था कि जो रास्ता यहाँ सिटी पर में रास्ता रही हो वही फिर वो बहुत बेहती हो फिर बहुत प्रकार होती है। रेडियो को गाना फिर पुराना साथ में

स्पीकर ने प्रस्ताव किया था कि घटना में बिजली प्रदर्शन तथा यात्रा द्वारा काम करा की कभी जांच होनी चाहिए। विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को मत विश्वास करो। अपना कार्य सुरक्षित रखो और कोई संकल्प आगे ना तुरंत नतीजे को स्वच्छ करने लगे जानकारी दिखो। आपत्कालीन अवस्थाओं में कहाँ कर रहे हैं नेता पहले एक सुंदर सुंदर हुआ इधारा तेरा मानव व्यक्ति का सत्ता को ब्यूरो इधारा सतहत्तर